जाइए सजना फ्रॉम धुरंधर बाय जैस्मिन सैंडलर्स। और जब भी मिर्ची टॉप 20 पर कोई नया गाना आता है, मेरा प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। पहले ऑडियो, सिर्फ ऑडियो, आंखें बंद करके। अगर गाना वहां काम कर गया तो फिर वीडियो देखने का मन करता है, और यही मैंने किया विद अ सॉन्ग फ्रॉम वेलकम टू द जंगल जिसका नाम है ऊंचा लंबा कद फॉरएवर। और मुझे मानना पड़ेगा, विक्रम मॉन्ट्रोज ने इस रिक्रिएशन को एक इज्जत दी है। गाने में एनर्जी है, बीट एडिक्टिव है, और कम से कम ये अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वीडियो देखते ही एक और ख्याल आया यार, हम बॉलीवुड में अक्सर चेहरे याद रखते हैं लेकिन आवाजें भूल जाते हैं। और जो ओरिजिनल वाला ऊंचा लंबा कद है, उसकी बात जब होती है तो लोगों को कटरीना कैफ याद आती है, अक्षय कुमार याद आते हैं, लेकिन उस गाने के असली आर्किटेक्ट आनंद राज आनंद। और शुक्र है कि इस नए वर्जन में उनकी आवाज को रिटेन किया गया है, वही आनंद राज आनंद जिन्होंने हमें दिए कुछ आइकॉनिक गाने।

0: रोमांस भी, दर्द भी और डांस फ्लोर भी। कितने कंपोजर्स ये रेंज क्लेम कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ देम वर चार्ट बस्टर्स। और हाँ, एक बात और है, दिशा पाटनी अपनी जगह एक स्टार है, लेकिन कुछ गाने चर गाने नहीं होते, वो किसी एक परफॉर्मर की याद के साथ परमानेंटली लॉक हो जाते हैं। और ऊंचा लंबा कद, वेल वो कटरीना कैफ के नाम पर रजिस्टर्ड है। नंबर 9 पर डेब्यू हो रहा है इस गाने का, ऊंचा लंबा कद, फॉर एवर फ्रॉम वेलकम टू द जंगल।
1: नंबर 9।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 it's hot Suren ke saath only on Mirchi it's hot
1: number 8

यार कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ गाने नहीं गाती, वो हमारी जिंदगी के अलग अलग चैप्टर्स में साथ चलती रहती हैं। सुनिधि चौहान उनमें से एक है, अरिजीत सिंह भी उनमें से एक है। लेकिन कितनी इंटरेस्टिंग बात है, जब अरिजीत अपना पहला बॉलीवुड गाना गा रहा था तब तक सुनिधि एक पूरी जनरेशन का साउंडट्रैक बन चुकी थी। मुझे आज भी मस्त का वो गाना याद है, वे आई हर्ड सुनिधि फॉर द फर्स्ट टाइम एंड माय माइंड वाज ब्लोन। रुकी रुकी थी जिंदगी, एक आवाज जो अलग थी, नई थी और बिल्कुल सुनिधि चौहान थी। फिर सालों बाद आए अरिजीत सिंह और धीरे धीरे वो आवाज बन गए। इसके बिना बॉलीवुड का रोमांस अधूरा लगने लगा, और जब ये दोनों एक ही गाने में मिलते हैं तो कुछ खास हो जाता है। और आज तुझको में आप उस जादू को महसूस कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए उनकी वोकल केमिस्ट्री का पीक आज भी ये गाना है।

0: सुनिए उस पल को। ना अरिजीत आगे निकलने की कोशिश करते हैं, ना सुनिधि। दोनों एक दूसरे को एलिवेट कर रहे हैं और शायद इसी को म्यूजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन अब मिर्ची टॉप 20 पर गाना नंबर 7, फिर वही आवाज, एक और एहसास। अरिजीत सिंह इज सोलो राइट नाउ, दिस इज गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर।
1: नंबर 7।

0: Mirchi. It's hot. Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: Number 5.

0: और फिर खुद को चौथी पांचवी बार प्ले करते हुए पकड़ लेते हो। और मुझे लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा रीजन है इसका सिंगर राघव चैतन्य, क्योंकि कुछ सिंगर्स सुर में गाते हैं, कुछ सिंगर्स पर्सनालिटी में गाते हैं, और राघव दूसरी कैटेगरी में आता है। सारी परतें हटा के सुनो, सिर्फ राघव की आवाज सुनो।
1: पड़े अगर तेरे लिए।

0: देखिए कैसे वॉइस को यूज कर रहा है ये लड़का। कभी ब्रीजी है, कभी फ्लर्टेशियस है, कभी ऑलमोस्ट कॉन्वर्सेशनल है, जैसे आपसे बात कर रहा हूं। गाना सिर्फ गा नहीं रहा, परफॉर्म कर रहा है। और शायद इसलिए प्रीतम दा बार बार उसकी तरफ लौट रहे हैं। इन एनिमल, इन मेट्रो, इन दिनों, इन कॉकटेल। इनफैक्ट राघव ने तो कई बार प्रीतम दा के गाने कवर भी किए अपने वीडियोस में।
1: इतनी

0: dude, it sounds so lovely. Pattern साफ नजर आ रहा है. मिर्ची डॉट 20 पर नंबर 3 पर है तू ही दिसदा फ्रॉम भूत बंगला, जो कोविड के बाद अक्षय कुमार की सबसे कामयाब फिल्म है. लेकिन हम राघव चैतन्य की इस ट्रेन से उतरने नहीं वाले, क्योंकि माशूका से पहले एक और गाना था जिसने सबको पूछने पर मजबूर कर दिया, यार ये सिंगर कौन है. माय पिक ऑफ द वीक इज फ्रॉम एक विलन रिटर्न्स. दिल इश्क तो है बट साथ में दर्द भी.
1: पिक ऑफ द वीक.

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट सुरेन

हार्डी संधू एंड किरण बाजवा हैव गॉट अ हिट सॉन्ग टू देयर क्रेडिट. वाओ. एंड अब जब है जवानी तो इश्क होना है थिएटर्स में एक हफ्ता बिता चुकी है, तो मुझे लगता है कि फिल्म से ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसका म्यूजिक, क्योंकि उस एल्बम में दो गाने ऐसे हैं जो पहले से ही सुपर हिट्स बन चुके थे, चुनरी चुनरी एंड देन इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग जो बीवी नंबर वन में था, इश्क चांदी है इश्क सोना है सोना बाबा सोना सोना सोना. वेल, मुझे लगता है कि बॉलीवुड का म्यूजिक एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है. आज के कंपोजर्स को शायद लगता है कि लिसनर 3 सेकंड में शायद बोर हो जाएगा, इसलिए हर दूसरे सेकंड कुछ ना कुछ हो रहा होता है गाने में. नई बीट, नया ड्रॉप, नया इफेक्ट, नई लेयर, और फिर गाना खत्म होने के बाद आपको गाना याद ही नहीं रहता. आप जरा ओरिजिनल वाला इश्क सोना है सुनिए. इश्क़

यार क्या था इस गाने में? कुछ खास नहीं, और शायद वही इसकी खासियत है। मेलोडी को सांस लेने की जगह मिली, हुक को बैठने की जगह मिली। गाना आपका अटेंशन डिमांड नहीं कर रहा था, गाना आपको साथ ले जा रहा था। हर गाना लाउड होकर याद नहीं रहता, कुछ गाने चुप रहकर भी याद हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त बॉलीवुड में एक गाना इतना लाउड है कि उसके सामने सब पीके पड़ रहे हैं। 17 हफ्ते एट द नंबर 1 पोजीशन इज नो जोक एंड आई स्टिल फाइंड इट अनबिलीवेबल। और अब तो OTT पर भी हुड़दंग मचा रखा है, मैडनेस नजर आ रही है। दिस इज शरारत बाय मधुवंती बागची, जैस्मिन सैंडलास फ्रॉम धुरंधर, नंबर 1।

0: और बस इसी के साथ एक और एपिसोड, एक और काउंटडाउन और बॉलीवुड की एक और कहानी खत्म होती है। कुछ गाने इस हफ्ते चार्ट्स पर चढ़े, कुछ हिट कर गए और कुछ ने हमें याद दिलाया कि अच्छा म्यूजिक कभी पुराना नहीं होता। बट टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, अपनी प्लेलिस्ट को जिंदा रखिएगा और अपनी यादों को भी। दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। On Radio Mirchi, Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: It's hot.
1: मिर्ची, it's hot.
0: Radio Mirchi, it's hot.
2: Mirchi.

0: Mirchi, it's hot.
1: अरे यू के बड़ा गोरी भाई बचा

न्यूज़ में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। बादशाह।

Mitchie. It's hot.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: ओके देन, मिर्ची सुन रहे हैं आप। बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है, एक री एंट्री है। हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है, सम स्पेशल गाना स्पॉटलाइट्स, ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करते हैं हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। गाने का नाम है उड़ी उड़ी बाय अनीश सरकार हृदय। इट्स अ नई नवेली एंट्री, उड़ी उड़ी ने डेब्यू किया है ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद मिट्टा रॉर स्वरा वर्मा की आवाज, मिट्टा रॉर की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा। 11 हफ्तों से ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार रहा है, पिछले हफ्ते से एक्चुअली 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके शीशा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: स्वरा वर्मा मिटर और की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा। दिस वीक ऑन गाना नंबर 9 काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, इट्स अ कोक स्टूडियो सॉन्ग, दैट मींस फ्यूजन एंड कोलैबोरेशन।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। अभी करो फॉलो, करना बिल्कुल फ्री है। कोई गाना सजेस्ट करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। अक्सर जब हम कोक स्टूडियो के बारे में बात करते हैं तो उसके ओवरऑल म्यूजिक इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। हर किसी का अपना फेवरेट कोक स्टूडियो गाना है। कोई मदारी बोलेगा,
2: मदारी मदारी मदारी मदारी मेरा तू, मैं जम्मूरा रे जम्मूरा।
0: तो किसी के लिए वो होगा चौधरी,
3: मर बड़े मैं जागी दो तनी रे, चंदा मैं थारी चांदनी, मन दामन में पा ही कुसी रे जुम जुम जुम।
0: या फिर द गुजराती एंथम खलासी, बट आई ट्रूली थिंक दैट कोक स्टूडियो का इम्पैक्ट किसी एक गाने तक लिमिटेड नहीं है। दिस इज वन प्लेटफॉर्म जो हमें याद दिलाता है दैट इंडिया का म्यूजिक सीन कितना बड़ा है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ 100 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज बदल जाती है, फोक ट्रेडिशन बदल जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बदल जाते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम म्यूजिक में हमेशा सबकी जगह नहीं बनी, और वो कोक स्टूडियो ने किया। उसने फोक आर्टिस्ट को सिर्फ फीचर नहीं किया, उनको सेंटर स्टेज दिया है। चौधरी में राजस्थान की मिट्टी है, मदारी में फोक और रॉक एक साथ है। That's what we call the perfect fusion. But ये perfect fusion जो है सिर्फ sounds and genres तक limited नहीं है, right? यहाँ पे generations मिल रही हैं, music के different regions मिलते हैं, independent artist और folk musicians एक साथ मिलते हैं। जो गाने वो produce करते हैं उसमें traditional roots होते हैं, दूसरी तरफ contemporary production, uber cool beats कि ऐसा लगता है ये गाना कहीं सुना भी है और नया भी है। And countdown का जो अगले वाला गाना है वो exactly ऐसी ही collaboration है। एक तरफ आदित्य रिखारी जैसे pop star, दूसरी तरफ कुटले खान जैसे contemporary राजस्थानी आर्टिस्ट, रैविटोर का म्यूजिक, ऊबर कूल प्रोडक्शन, गाने का नाम है ए अजनबी। अपने रेडियो सेट्स के वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। 8 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग ए अजनबी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 8।

0: हमीर शर्मिया की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, रजत नागपाल, राणा सोतल का गाना, गाने का नाम है शराब। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है, तीन हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। शराब वॉज दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना शेयर करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। वी वर टॉकिंग अबाउट कोक स्टूडियो भारत। कैसे? कोक स्टूडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंटेम्प्रेरी प्रोडक्शन, फोक आर्टिस्ट, ट्रेडिशनल रूट्स को एक फ्यूजन की तरह प्रेजेंट करता है। हर किसी का अपना फेवरेट कोक स्टूडियो गाना है, बट टुडे वी वांट टू गिव स्पॉटलाइट टू पहली बार ये गाना सुन के एकदम पावरफुल फ्यूजन ट्रैक लगता है, राइट? विशाल ददलानी की रॉ एनर्जी, सोनू कक्कड़ के बहुत इंप्रेसिव वोकल्स हैं इस गाने में, क्लिंटन सेरेयो की अरेंजमेंट, फोक रॉक सूफी इन्फ्लुएंसेस हैं, विच इज ऑल ग्रेट, राइट? बट इस गाने की जो असली ब्यूटी है, जो असली पावर है, उस गाने के मीनिंग में है। जो मेन लाइन है इस गाने की, इट सेज मदारी मेरा तू मैं जमूरा तेरा। मदारी मतलब वो स्ट्रीट परफॉर्मर जो खेल दिखाता है, जमूरा उसका साथी जो उसके इशारों पर चलता है। और ये जिंदगी एक सर्कस ही तो है जहां हम बस नाच रहे हैं। ये लिरिक्स मनोज यादव ने लिखे हैं, इट्स अ स्पिरिचुअल मेटाफर। इंसान जमूरा है और जिंदगी इश्क या शायद ऊपर वाला मदारी। हमको लगता है कि हम कंट्रोल में है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब किसी ना किसी इनविजिबल फोर्स के साथ डांस कर रहे होते हैं, ऐसा मनोज यादव कह रहे हैं इस गाने के थ्रू। विद द कॉम्बिनेशन, द पावर, द एनर्जी, द वोकल्स, इट्स टॉप नॉच, 10/10 एक्सपीरियंस। इस गाने को आप सिर्फ सुनते नहीं है, पता नहीं, मेरे को लगता है ये गाना ऐसे लंग्स में उतर जाता है, बिकॉज इतनी एनर्जी दे जाता है। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। इतने सालों बाद भी अगर आप म्यूजिक लवर से उनका फेवरेट कोक स्टूडियो इंडिया ट्रैक पूछते हो, मदारी का नाम ऑलमोस्ट हर कोई बोलता है। विशाल ददलानी, सोनू कक्कड़ की आवाज, क्लिंटन सेरेयो की कॉम्पोजिशन, मनोज यादव के लिरिक्स, दिस इज मदारी, अ कोक स्टूडियो थ्रोबैक, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 5

0: ये गाना खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होता, आप सोचते हो एक और बार सुनूंगा और फिर खुद को चौथी पांचवी बार प्ले करते हुए पकड़ लेते हो। और मुझे लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा रीजन है इसका सिंगर राघव चैतन्य, क्योंकि कुछ सिंगर्स सुर में गाते हैं, कुछ सिंगर्स पर्सनालिटी में गाते हैं और राघव दूसरी कैटेगरी में आता है। सारी परतें हटा के सुनो, सिर्फ राघव की आवाज सुनो।
1: पड़े अगर तेरे लिए मर भी जाना, उफ नहीं कर दीवाना। मामा माशूका, ओ माय माशूका।
0: देखे कैसे वॉइस को यूज कर रहा है ये लड़का, कभी ब्रीजी है, कभी फ्लर्टेशियस है, कभी ऑलमोस्ट कॉन्वर्सेशनल है, जैसे आपसे बात कर रहा हूं। गाना सिर्फ गा नहीं रहा, परफॉर्म कर रहा है, और शायद इसलिए प्रीतम दा बार बार उसकी तरफ लौट रहे हैं। इन एनिमल, इन मेट्रो, इन दिनों, इन कॉकटेल, इनफैक्ट राघव ने तो कई बार प्रीतम दा के गाने कवर भी किए अपने वीडियोस में।

0: dude, it sounds so lovely. Pattern साफ नजर आ रहा है. मिर्ची टॉप 20 पर नंबर 3 पर है तू ही दिसदा फ्रॉम भूत बंगला, जो कोविड के बाद अक्षय कुमार की सबसे कामयाब फिल्म है. लेकिन हम राघव चैतन्य की इस ट्रेन से उतरने नहीं वाले, क्योंकि माशूका से पहले एक और गाना था जिसने सबको पूछने पर मजबूर कर दिया, यार ये सिंगर कौन है. माय पिक ऑफ द वीक इज फ्रॉम एक विलन रिटर्न्स. दिल इश्क तो है बट साथ में दर्द भी.
1: पिक ऑफ द वीक.

0: Hardy Sandhu and Kiran Bajwa have got a hit song to their credit. Wow! And अब जब है जवानी तो इश्क होना है थिएटर्स में एक हफ्ता बिता चुकी है तो मुझे लगता है कि फिल्म से ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसका म्यूजिक, क्योंकि उस एल्बम में दो गाने ऐसे हैं जो पहले से ही सुपर हिट्स बन चुके थे, चुनरी चुनरी एंड देन इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग जो बीवी नंबर वन में था, इश्क चांदी है इश्क सोना है सोना बाबा सोना सोना सोना। वेल, मुझे लगता है कि बॉलीवुड का म्यूजिक एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है। आज के कंपोजर्स को शायद लगता है कि लिसनर 3 सेकंड में शायद बोर हो जाएगा, इसलिए हर दूसरे सेकंड कुछ ना कुछ हो रहा होता है गाने में, नई बीट, नया ड्रॉप, नया इफेक्ट, नई लेयर, और फिर गाना खत्म होने के बाद आपको गाना याद ही नहीं रहता। आप जरा ओरिजिनल वाला इश्क सोना है सुनिए।
1: इश्क

0: यार क्या था इस गाने में? कुछ खास नहीं, और शायद वही इसकी खासियत है। मेलोडी को सांस लेने की जगह मिली, हुक को बैठने की जगह मिली। गाना आपका अटेंशन डिमांड नहीं कर रहा था, गाना आपको साथ ले जा रहा था। हर गाना लाउड होकर याद नहीं रहता, कुछ गाने चुप रहकर भी याद हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त बॉलीवुड में एक गाना इतना लाउड है कि उसके सामने सब पीके पड़ रहे हैं। 17 हफ्ते एट द नंबर वन पोजीशन इज नो जोक एंड आई स्टिल फाइंड इट अनबिलीवेबल। और अब तो ओटीटी पर भी हुड़दंग मचा रखा है, मैडनेस नजर आ रही है। दिस इज शरारत बाय मधुवंती बागची, जैस्मिन सैंडलास फ्रॉम धुरंधर।
1: नंबर 1।

0: और बस इसी के साथ एक और एपिसोड, एक और काउंटडाउन और बॉलीवुड की एक और कहानी खत्म होती है। कुछ गाने इस हफ्ते चार्ट्स पर चढ़े, कुछ हिट कर गए और कुछ ने हमें याद दिलाया कि अच्छा म्यूजिक कभी पुराना नहीं होता। बट टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, अपनी प्लेलिस्ट को जिंदा रखिएगा और अपनी यादों को भी। दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

गाओ हरे ला ऊंचा पाओ यू पटका है ये देसी घमेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो।

0: Mirchi, it's hot.
1: Yeah. I like the way you move right there.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

मिर्ची इट्स हॉट।

गुड मॉर्निंग माय देसी पीपल, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग। मेरा नाम है प्रिसिला और अब लेकर आ चुकी मैं तुम्हारा मौसम का हाल चाल यानी कि वेदर अपडेट। फिलहाल टेम्परेचर इज सिटिंग एट 66 डिग्री फारेनहाइट, इट्स मोस्टली क्लाउडी, लेकिन हवा जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ड्रामेटिक है एंड हमें फील करा रही है 63 डिग्री फारेनहाइट के आसपास का तापमान। गुड न्यूज ये है कि सनशाइन इज एक्सपेक्टेड थ्रू आउट द डे। सो अगर तुमने सुबह सुबह स्काई देखा और बोला अरे यार ग्रे लग रहा है, तो ऐसा नहीं होने वाला है, आज स्काई एकदम ब्लू रहने वाला है। आज का टेम्परेचर रेंज है 63 डिग्री से लेकर 77 डिग्री फारेनहाइट तक एंड इट विल फील लाइक 61 से लेकर 76 डिग्री फारेनहाइट तक। और कंपैरिजन अगर करें तो कल का हाई गया था 90 डिग्री फारेनहाइट तक एंड आज जाने वाला है 77 डिग्री फारेनहाइट तक बस, यानी कि कल के हिसाब से आज टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कम है। रेन रिपोर्ट भी क्लीन है, लास्ट 24 आवर्स में देयर वाज 16 मिलीमीटर्स का रेन एंड अभी अगले 24 आवर्स में 0 मिलीमीटर्स का रेन एक्सपेक्टेड है। सो आज अम्ब्रेला लेकर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, अनलेस यू वांट टू मारो सम स्टाइल विद दैट रियली कूल अम्ब्रेला ऑफ योर्स। और अभी बाहर निकलने के पहले SPF 50 ++++ लगाना बिल्कुल मत भूलना। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, लेयर के प्लेयर बनो और मिर्ची सुनते रहो। मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। जाकर मुझे फॉलो भी कर लो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग माय मिर्ची फैमिली, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, और अब चलने वाले हम साथ साथ में एक टाइम ट्रैवलिंग जर्नी पर। आज के दिन क्या हुआ था हिस्ट्री में पता करने। सबसे पहले 1215 इंग्लैंड के किंग जॉन को लोगों ने बेसिकली कहा था, बॉस रूल्स सब पे अप्लाई होते हैं, इवन तुम पर। एंड तब साइन हुई थी मैग्ना कार्टा, मतलब ये हिस्ट्री का पहला टर्म्स एंड कंडीशंस था। एंड फिर हम जंप करते हैं 1667 में फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था। आई मीन जस्ट इमेजिन उस जमाने के लिए कितनी बड़ी बात रही होगी। 1775 में जॉर्ज वॉशिंगटन बिकेम कमांडर इन चीफ। 1864 में आर्लिंगटन नेशनल सेमेटरी स्टैब्लिश हुई थी। एंड 1904 में न्यूयॉर्क में जनरल स्लोकम स्टीमबोट ट्रेजेडी हुई थी, विच इज अ डिफिकल्ट डे इन हिस्ट्री एंड अ रिमाइंडर ऑफ हाउ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफन कम आफ्टर पीपल पुश फॉर चेंजेस। 1924 आया, फोर्ड ने बनाई अपनी 10 मिलियंथ मॉडल टी। तो देखा एक ही डेट पर कितना कुछ हो सकता है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग रोमांटिकली बल्कि हिस्टोरिकली। फिलहाल फटाफट से जाओ मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग, ये है मिर्ची मॉर्निंग्स और मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, और अब लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय टू सर्व विद योर ब्रेकफास्ट। So apparently Lagaan was about to release and lyricist writer legend Javed Akhtar saab ne Aamir Khan sir ko kaha tha, bhai mat karo yaar. He said the film wouldn't work, called the script atrocious and kaha tha period films ka zamana gaya. Lekin is time par jo plot twist hua wo bahut zyada loud tha. Lagaan became iconic. Recently Lagaan ne 26 years complete kiye, lekin 26 years pehle Aamir Khan ne kaha tha trust me bro. Javed saab ne kaha tha no beta no. History ne kaha actually hold my cricket bat, and then the rest is history. Honestly yaar, isn't that life? Kabhi kabhi ideas jo hai na on paper bahut hi weird lagte hain, lekin unme duniya badalne ki ताकत होती है, और हमारे देसी एक्सपर्ट्स तो ये सब बहुत अच्छे से जानते ही हैं। वी ऑल जज थिंग्स अ लिटिल बिट टू अर्ली कभी कभी। न्यू सिटी है, न्यू जॉब है, न्यू रूममेट है, न्यू चाय है, मजा नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद वी रियलाइज इट्स एक्चुअली नॉट बैड, इन फैक्ट इट्स अ ग्रेट आइडिया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पर ये है कि ब्लॉकबस्टर्स जो है वो भी स्टार्ट होते हैं कहीं ना कहीं दिमाग में इस आइडिया के साथ, क्या पता ये चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन हमेशा अपनी गट फीलिंग के साथ जाना चाहिए और अपनी सेल्फ बिलीफ को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहिए, बिकॉज इफ यू आर नॉट बिलीविंग इन योर सेल्फ हु एल्स विल। तो इसी बात पर एक सवाल मैं पूछती हूँ तुमसे, कौन सी ऐसी मूवी है जिसके रिलीज के टाइम पर तुम्हें लगा था ये नहीं चलेगी लेकिन आगे जाकर ब्लॉकबस्टर हो गई वो? फॉर मी दैट मूवी इज एनिमल। फटाफट से मुझे डीएम करके बताओ इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

है। लाइफ में एक ऐसा दोस्त तो होना चाहिए जो तुम्हें कहता है हाँ यार चिल मार लाइफ में, और मैं वही दोस्त हूँ जो तुम्हें चिल और चिली दोनों मोड पर ले आती है, यानी कि मिर्ची के साथ करेंगे हम वाइब। और ऐसे ही नहीं, मेरे पास है गॉसिप गपशप न्यूज अपडेट्स एंड मच मोर, और अभी मिर्चीदार बैंगर्स का टाइम है। और लाइफ का एक सिंपल सा फंडा है यार, हर चीज में डॉलर और रुपीज को एक्सचेंज करना बंद करो, बल्कि अपनी नेगेटिविटी को एक्सचेंज करो पॉजिटिविटी से, और लाइफ को बनाओ सुपर मिर्चीदार। मुझे यानी कि प्रिसिला को फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम इंस्टा और एक्स पर, एंड व्हाट्सएप कर सकते हो तो मुझे 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। तो बैठे क्यों हो, जाके फॉलो करो ना फटाफट से। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग मिर्ची मॉर्निंग्स पर मैं हूँ प्रिसला, योर लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ मिर्ची दार एनर्जी। चाहे तुम अपनी लाइफ को क्वेश्चन कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्या करते हो तुम अपनी लाइफ में, या फिर तुम सुबह सुबह बोलती बंद करके सोचते रहते हो, जो कुछ भी कर रहे हो मुझे अपने साथ चिपका कर रखो, क्योंकि लाइफ का फंडा सिंपल।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैन हैटन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी?
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

अगर तुम्हारे ब्रेन में 75 टैब्स खुले हुए हैं तो उन्हें बंद करो और अभी सिर्फ ये सुनो मिर्ची मॉर्निंग्स पर। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में और अब लेकर आयो तुम्हारे लिए सबसे पहले जर्मनी जस्ट मेड फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री बिकमिंग द हाईएस्ट स्कोरिंग टीम एवर एंड मूविंग पास्ट ब्राजील इन ऑल टाइम वर्ल्ड कप गोल्स। दे आल्सो ओपन्ड विद अ 7-1 विन ओवर क्यूरासाओ। बिग मोमेंट टू फॉर क्यूरासाओ, द टूर्नामेंट डेब्यूटेंट्स स्कोर्ड देयर फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप गोल। सो यस, टफ स्कोरलाइन है लेकिन ऑल्सो अ हिस्ट्री मेकिंग डे ऑन बोथ साइड्स। नंबर टू पर, अ रेफरी इन्वॉल्व इन द जर्मनी क्यूरासाओ मैच ब्रॉडकास्ट इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड आफ्टर व्यूअर्स रेज्ड कंसर्न्स अबाउट अ हैंड जेस्चर शोन ऑन लाइव टीवी। एन इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे। एंड लास्टली, इलॉन मस्क रिस्पोंडेड टू समवन ऑनलाइन सेइंग बिकमिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वाड्रिलियनेयर इजंट इम्पॉसिबल बट अपेरेंटली वुड रिक्वायर फैक्ट्रीज ऑन द मून एंड मार्स। सर, मोस्ट ऑफ अस आर स्टिल कंपेयरिंग ओटमील प्राइसेस एंड डिसाइडिंग वेदर गुआक इज फाइनेंशियली responsible or not. That's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour with me Priscilla. Sun rahe ho to mujhe dekh kar bhi aao. Insta aur X pe mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp pe mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड स्पोर्ट्स में इंडियन वुमेन किक्ड ऑफ देयर टी20 वर्ल्ड कप 2026 कैंपेन विद अ मैसिव 64 रन विन ओवर पाकिस्तान। फाइनल स्कोर इंडिया 174/6 एंड पाकिस्तान ऑल आउट फॉर 106 इन 17 ओवर्स। और मैच की MVP एनर्जी वॉज दीप्ति शर्मा, बैटिंग भी की, बोलिंग भी की और फिर कैजुअली 5 विकेट्स भी ले लिए। मतलब शी डिडंट जस्ट एंटर द चैट, शी आर्काइव did. Also, this is India's biggest ever win over Pakistan in women's T20 history. And speaking of winning, Tanishq is season mein win kar rahe with a festival of exchange because Globe ka season chal raha hai yaar. Jahan pe tumhe offers mein mil rahe hain $5 extra per gram on exchanged gold upon diamond purchases and 0% deduction on exchange of old gold above 9 carats. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है। फिलहाल मिर्चीदार गाने आने वाले तुम्हारे लिए, तब तक तुम जाओ मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रेस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

नमस्ते माय दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट मिर्ची। मॉर्निंग्स पर चल रही है मिर्ची योगा क्लासेस, बिकॉज इंटरनेशनल योगा डे इज कमिंग ऑन 21st of June एंड हम यानी कि मिर्ची वाले डिसाइड कर चुके कि हम भी वेलनेस इन्फ्लुएंसर्स बन चुके हैं। ग्लोबली योगा डे सेलिब्रेट्स इंडियन प्रैक्टिसेस दैट कनेक्ट्स बॉडी माइंड एंड ब्रेथ एंड दिस ईयर्स थीम इज योगा फॉर हेल्दी एजिंग। नमस्ते, मैं हूँ तुम्हारी गुरु प्रसनांदा और आज तुम सीखने वाले हो द फॉरवर्ड विदाउट रीडिंग शवासना। सबसे पहले अंकल ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा है, साथ में यही मैसेज 470 अदर लोगों को भी भेजा है और साथ में लिखा है फॉरवर्ड दिस टू 10 पीपल वरना 30 डेज का बैड लक मिलेगा। सोर्सेज डबल कोट्स में ट्रस्टेड है। अब स्टेप टू, अपनी सांस खींचे और मैसेज को ओपन करें। स्टेप थ्री, लंबी सांस छोड़े। स्टेप फोर, मैसेज को बिना पढ़े ही डिलीट कर दें। एंड स्टेप फाइव, फोन को साइड में रख कर लाई डाउन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव जस्ट एंटर्ड शवासना ऑफ फ्रीडम। All right, feel the guilt leaving your body, feel the notifications reducing and feel your ancestors whisper. Finally, advanced practitioners may also mute the family group for next 8 hours. Remember, yoga is not only for stretching your body, but sometimes yoga is stretching your ability to not reply immediately. Now tell me, what's your funniest accidental yoga pose? Was it laptop nikasana, airport bhagasana, frozen on Zoom mudrasana? Abhi kabhi WhatsApp bhejo mujhe 9033 mirchi par, that's 9033647224, या फिर कनेक्ट विथ मी एट मिर्ची प्रेस ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड अंटिल नेक्स्ट क्लास, ब्रीद इन द कॉन्फिडेंस एंड ब्रीद आउट ऑल द डाउट्स दैट राइम्ड। नमस्ते, मैं हूँ प्रिसिला, सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: हेलो देयर, दिस इज प्रिसिला विद यू एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, जहां पर अब हम सुनने वाले हैं सोना और चांदी का रेट क्या चल रहा है।
1: राज जोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,330, $4,330 पर ट्राई उसके साथ। गोल्ड के प्राइजेस ट्रेड कर रहे हैं और इस साल के लोवेस्ट ट्रेडिंग पॉइंट पर है। गोल्ड अमेरिका में इंडिया से सस्ता है। किस तरह से गोल्ड में अमेरिका में इन्वेस्ट करते हुए आप अपने पैसे सेव कर सकते हैं, राज ज्वेल्स के टीम मेंबर से कनेक्ट करें और रिस्पॉन्सिबली गोल्ड बार्स और सिल्वर बार्स 1 ounce 100 gram किलो बार्स ऑफ पैम सर्टिफाइड। आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग।
0: देयर यू हैव इट, सोना चांदी का रेट अप टू डेट। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। फटाक से मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर कनेक्टिंग नंबर है 9033 mirchi, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: जी
1: की गल करनी है
0: तेरे मेरे बारे
1: की
0: यार बचपन तो लेके आज तक तू ही है
1: बचपन दी बात होर सी
0: पर 10 साल हो गए
1: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ फोन ते गल करती हूँ
0: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स पर मिर्ची आवर का थ्री. सबसे पहले न्यूयॉर्क सेलिब्रेटेड अ हिस्टोरिक बास्केटबॉल चैंपियनशिप मोमेंट, बट सम सेलिब्रेशंस टर्न्ड कियोटिक नियर टाइम्स स्क्वायर. रिपोर्ट से अ टीनेजर वाज आल्सो इंजर्ड बाय गन फायर एंड प्रॉपर्टी वाज डैमेज्ड. नंबर टू पर अ यूएस वुमन वेंट वायरल आफ्टर शेयरिंग दैट अ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कोटेड अराउंड $1,000 इन अमेरिका रिपोर्टेडली कॉस्ट ओनली $25 in India. And the story sparked conversations online around healthcare, affordability and accessibility. And number three per Australia's Nishan Welupille became the first Indian origin footballer in 20 years to play at the FIFA World Cup. And that's it for Mirchi Hour ka 3 with me Priscilla on Mirchi Mornings. Abhi mujhe follow karo. Mirchi Pris is my handle name on Insta and X. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033 647244. Stay tuned and stay hot.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स का वो टाइम जहाँ पर हम सितारों की बातें करते हैं।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: इट इज यानी मेष राशि। टुडे सीरियस काम भी है, लेकिन बैटरी को एयरप्लेन मोड में रख लो। स्टॉप कम्पीटिंग विद एवरीबॉडी एंड एंजॉय पीपल। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक कोरल। लकी नंबर इज 18। टॉरस यानी कि वृषभ राशि। मनी इंपॉर्टेंट है, बट हार्ट भी ईएमआई पर नहीं चल सकता है। रोमांस, कनेक्शन और थोड़ी सी सॉफ्टनेस चूज करो ओवर कॉन्स्टेंट अचीवमेंट। लकी कलर इज रोज गोल्ड। लकी नंबर इज 42। जेमिनी यानी मिथुन राशि। पीपल से डू इट प्रॉपरली, क्यूट। टुडे Your magic comes from independent thinking. Break patterns, not laws. Lucky color is aqua blue. Lucky number is 5. Cancer yani karaka rashi. Find one quiet moment today. The next step ka answer Google par nahi, tumhare andar chupa hua hai. Samjhe? Lucky color is moon silver. Lucky number is 27. Leo yani ki siha rashi. People are drawn to your vibe today. New connections are possible, but remember, not every exciting person needs permanent access to your calendar. Lucky color is amber gold. Lucky number is 9. Virgo yani kanya rashi. Detective mode on. Look beneath the surface today. Agar koi topic avoid kar raha hai, maybe wahi interesting hai. Lucky color is sage green. Lucky number is 31. And that was Rashi Zone part 1. Agar tumhare signs abhi tak nahi aaye hain to thodi si der mein aayenge. Only on Mirchi Mornings. Mera naam hai Prisala. Mujhe follow karo. Mirchi Pris is my handle name, Insta or X par. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033 364-7244. Stay tuned and stay hot.

0: वेलकम बैक टू मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला और अब आने वाला है
1: मिर्ची राशि जोन।
0: सबसे पहले लिब्रा यानी तुला राशि एडवेंचर भुला रहा है। डोंट वेस्ट एनर्जी कन्विंसिंग समवन हु वांट्स कंफर्ट ओवर एक्साइटमेंट। फाइंड योर ओन क्रू। लकी कलर इज सनसेट पीच। लकी नंबर इज 14। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, सेफ ऑप्शन या बोल्ड मूव। यूनिवर्स इज लो की पुशिंग यू फॉरवर्ड टुवर्ड्स समथिंग एक्साइटिंग। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट। लकी कलर इज मिडनाइट प्लम। लकी नंबर इज 8। सजिटेरियस यानी धनु राशि, समवन सीम्स क्यूरियस अबाउट यू। रिलैक्स FBI mode, not every question is interrogation. Lucky number is 22. Lucky color is cinnamon bronze. Capricorn yani makar rashi, boundaries baby, boundaries. Don't ignore small issues to avoid drama. Future you will file complaints. Lucky color is charcoal blue. Lucky number is 40. Aquarius yani kumbh rashi, pause and ask, is this really what you want? If excitement is gone, permission granted to rethink the plan. Lucky color is Arctic mint. Lucky number is 11. And last but not the least, Pisces, yani ki mean rashi, don't carry the whole world emotionally today. If something feels unfair, connect, speak, build community. Lucky color is lavender mist. Lucky number is 36. And that's it. The stars have spoken and so have I. Ab chalte hain Mirchi Dar Bangers ki taraf. Mera naam hai Prisala. Sun rahe ho mujhe Mirchi Mornings par. Jaldi se mujhe follow bhi kar lo Insta aur X par. Mera handle name hai Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.
2: निकला

0: Itchy. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना।

0: कल रात ना मुझे नींद नहीं आ रही थी,
1: तो आई फेल्ट कि यार सारा कुछ तो गड़बड़ है यार, ये बिना बात की नींद कैसे उड़ गई।
0: बस फिर क्या, गूगल बाबा से पूछ लिया, और आप तो जानते हो एक बार गूगल बाबा से पूछा मतलब ठाकुर तो गयो।
2: सारा जमाना सारा का दीवाना।
3: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. बस क्या यार, Google पर जो लिखा था ना वो पढ़कर तो मेरी नींद और ही उड़ गई। फिर मैंने वही नुस्खा अपनाया जिससे बचपन में मुझे अच्छी नींद आया करती थी। जरा सा नारियल तेल लगाया, चंपी की, और फिर जो बढ़िया नींद आई है, आ हा हा हा हा हा। अगर ये सवाल मैं आपसे भी करूं कि आप अपने बचपन के नींद लाने का कौन सा नुस्खा फॉलो करते हो, तो डीएम करो ना ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। अभी के लिए मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को गियर में डालती हूँ, आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: हम बॉलीवुड के भक्त लोग अगर MBBS की डिग्री देखेंगे ना तो बोलेंगे हाँ नाइस नाइस, लेकिन अगर मुन्ना भाई MBBS की CD देखेंगे ना तो बोलेंगे अबे ये कहाँ से मिली?
0: मिर्ची VCR.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और मुन्ना भाई वो फिल्म है जिसने जाने कितनों के करियर में फिर से चिंगारी जला दी. स्टार्टिंग विद संजू बाबा, जो इस फिल्म तक गैंगस्टर टाइप रोल्स ही प्ले किया करते थे. उनकी एक इमेज बन गई थी यार, लेकिन इस फिल्म के साथ उनकी इमेज की काया पलट गई. एंड देन कमिंग टू अरशद वारसी, जिनको MBBS से पहले 3 सालों तक कोई फिल्म नहीं मिली थी, और फिर इस मूवी के बाद कॉमिक रोल्स की ऐसी लाइन लगी उनकी लाइफ में कि पूछो मत. और बोमन ईरानी, इस फिल्म के बाद उनका करियर भी गॉट नोटिस्ड. एंड इनफैक्ट राजकुमार हिरानी की भी ये पहली फिल्म थी एज अ डायरेक्टर. और किस्मत का खेल देखो, इस फिल्म में विद्धू विनोद चोपड़ा ने पहले संजय दत्त को जहीर का रोल ऑफर किया था, द सेम रोल जो फिर जिमी शेरगिल ने प्ले किया. लेकिन कैसे चीजें बदली, वही तो बात आपको आगे बताऊंगी. यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: संजय दत्त को मुन्ना भाई MBBS के लिए जहीर का रोल ऑफर किया गया था और मुन्ना भाई का रोल ऑफर किया गया था शाहरुख खान को।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। लेकिन किस्मत का खेल कुछ यूं था कि शाहरुख खान की नेक की सर्जरी के चलते ही हैड टू से अ नो टू द फिल्म, एंड देन विद्यू विनोद चोपड़ा ने संजू बाबा को लीड रोल के लिए मूवी ऑफर की। हालांकि संजय दत्त वाज एप्रिहेंसिव टू डू द मूवी सिंस उन्हें उस टाइम पर डॉन और गैंगस्टर के रोल्स ही ऑफर हो रहे थे, बट सुनील दत्त साहब आस्क्ड हिम टू डू द फिल्म एंड ही सेड अ यस। और किस्मत का खेल देखो, इट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम संजय दत्त वाज प्लेइंग द रोल ऑफ मुन्ना भाई। इससे पहले भी उन्होंने क्रोध, हम किसी से कम नहीं इन सारी मूवीज में

मुन्ना भाई नाम के ही किरदार निभाए थे। फर्क यहाँ इतना था कि उसी नाम मुन्ना भाई के पीछे MBBS लग गया, तो स्टोरी की काया ही पलट गई यार। एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड कि एजुकेशन कैन डू वंडर्स टू आवर लाइव्स। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: आपको पता है संजू बाबा, हाँ संजू बाबा, आउट ऑफ ऑल पीपल यूज टू बी सो स्केर्ड ऑफ हिज फादर सुनील दत्त साहब व्हाइल वर्किंग फॉर मुन्ना भाई एमबीबीएस।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। वैसे फनी तो लगता है कि इतना ग्रोन अप बंदा इस उम्र में भी अपने फादर से डरता हो, बट क्यूट भी बहुत लगता है यार। एंड वेल, दत्त साहब का डिसिप्लिन और स्ट्रिक्टनेस वो बात थी जिससे संजय दत्त को घबराहट होती थी और वो अपने फादर के चक्कर में सेट पर टाइम पर पहुंचते थे। ये फिल्म संजय दत्त और सुनील दत्त साहब की साथ में की गई आखिरी फिल्म थी। इनफैक्ट दत्त साहब की ही आखिरी फिल्म थी क्योंकि अगले ही साल ही पास्ट अवे। एंड द फेमस जादू की झप्पी वाला सीन जो दत्त साहब और संजय दत्त के बीच शूट हुआ था ना, वो सिनारियो तो सिर्फ ऑन कैमरा ही नहीं, ऑन सेट्स भी इमोशनल हो गया था। जब दोनों बाप बेटे इस सीन के लिए गले लगे तो इमोशनल इतने हो गए कि डायरेक्टर ने तो कट बोल दिया था, लेकिन ये दोनों तब भी एक दूसरे के गले से लगे रहे और इन दोनों को रियलाइज ही नहीं हुआ कि सीन खत्म हो चुका है। और काफी देर तक दोनों आंखों में आंसू लिए एक दूसरे को झप्पी देते हुए वहीं खड़े रहे। उफ, इस बात ने तो मुझे भी इमोशनल कर दिया यार। यही तो कमाल है यार 90s के किस्सों में, ये हमें इमोशनल करके ही छोड़ती है। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सुखविंदर सिंह और विशाल ददलानी की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म कमीने। इट साउंड्स लाइक अ बॉयज पार्टी, फुल ऑन बॉयज नाइट। लेकिन पता है क्या, इस गाने के अंदर ना एक कॉमेडी या फिर यूं कहें कि ट्रेजेडी भी है। हाँ, मतलब एक रात पहले तो बंदे जो हैं वो गा रहे होते हैं कि आज आजा दिल ने छोड़े, रात की मटकी फोड़े, और अगली सुबह वो लोग ग्लास के अंदर नींबू निचोड़ निचोड़ के पी रहे होते हैं हैंगओवर उतारने के लिए।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And boss, इस गाने के बाद अब मेरे वाले गाने की बारी है। अरे वही गाने जो मैं अन्नू जी की तरह इधर उधर से उठाती हूँ, उनको मिलाती हूँ और उसकी धुन आपको मिला के सुनाती हूँ ताकि आप पहचान पाओ कि ये दो अलग अलग गाने कौन से हैं। तो आज की वो दो धुने जो मैंने आपके लिए चूज करी है वो है कुछ यू। ओके जी, इसी के साथ कार्यक्रम तो बहुत ही सिंपल है। आपने मुझे डीएम करना है ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, अपना नाम, अपने शहर का नाम और इन दोनों गानों के नाम लिखकर मुझे फटाक से भेज दो। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं आपको कोई हिंट दे दूं, तो आप गलत नहीं सोच रहे हो, मैं आपको हिंट दे ही देती हूँ। ये दोनों ही गानों में खान्स हैं, लेकिन दो अलग अलग खान्स। और इन दोनों ही गानों में बंगाली ब्यूटीज हैं, लेकिन दो अलग अलग बंगाली ब्यूटीज। अब 90s में कौन कौन बंगाली ब्यूटीज हुआ करती थी ये कैलकुलेट करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो फटाक से कैलकुलेट करके जवाब दो एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi. It's hot.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बचपन से हम इस गाने को गुनगुनाते आए हैं और आज इसकी धुन की सच्चाई सामने आ गई है।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: वेल, त्रिदेव का ये गाना

के म्यूजिक डायरेक्टर हैं बीजू शाह, हैज बीन कॉपीड फ्रॉम दिस गाना। अब आप भी सोच रहे होगे कि क्या यार सारा, दोनों धुनें एक के बाद एक बजा दी, लेकिन नहीं, ये एक्चुअली दो अलग अलग जगहों से उठाई हुई धुनें हैं। एक तो जो मैंने आपको सुनाई वो त्रिदेव की थी, एंड ये जो म्यूजिक जहां से इंस्पायर्ड है, रादर कॉपीड है, इज मायमी साउंड मशीन का द रिदम इज गोना गेट यू। यार वैसे तिरछी टोपी वाले ने तो शौक से एज अ फैशन स्टेटमेंट ये टोपी पहनी थी, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर बीजू शाह ने तो पूरी ऑडियंस को ही टोपी पहना दी। वाह, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जब मोहरा बन रही थी तो अनिल कपूर ने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल कहा था विच डिडंट गो वेल विद सुनील शेट्टी एंड अक्षय कुमार।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा एंड ऑफ कोर्स जो उन्होंने कहा वो झकास तो नहीं था। वेल ही टॉन्टेड बोथ द एक्टर्स बिकॉज़ ही सेड कि द डायरेक्टर राजीव राय को हुआ क्या है कि वो जैकी श्रॉफ और सनी देओल जैसे एक्टर्स को छोड़कर 50% एक्टर्स को लेकर बना रहे हैं फिल्म एंड बाय दिस ही मेंट कि सुनील और अक्षय न्यूकमर्स हैं जिन्हें एक्टिंग करनी नहीं आती, सो व्हाई चूज देम। एंड यस दे वर न्यूकमर्स एंड नॉट नोन फेसेस। और ये बात जब इन तक पहुंची तो सुनील शेट्टी को अनिल कपूर की ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि ही डिड नॉट एक्सपेक्ट सच अ थिंग फ्रॉम अ वेटरन एक्टर लाइक अनिल कपूर। फनी हाँ, जहां झकास बोलना था वहां बकवास बोल दिया। एनीवेज लेट्स मूव ऑन विद लाइफ। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: डियर आम पापड़,
1: यादों को चिट्ठी।
0: तुम आम नहीं, बड़े खास हो, बचपन का खट्टा मीठा एहसास हो। पर जाने मार्केट में क्या हलचल हुई कि अब तुम फिजिकली दूर हो, लेकिन स्टिल दिल के पास हो। वो पीली पन्नी में बंद के तुम आते थे और अपने अंदर खट्टे मीठे स्वाद जो तुम लाते थे, आज इंटरनेशनल चॉकलेट्स तक घर पर आ जाती हैं, पर उनमें भी तुम जैसी बात नहीं आती है। परत परत बारीकी से निकाल कर तुम्हें हम खाते थे, एक पैकेट जितना लंबा चल सके यही हम दिल से चाहते थे। बिंजिंग के नाम पर आज जाने क्या क्या खा लिया जाता है, फिर भी रूह कहती है मजा नहीं आता है। तुम आ जाओ नजर किसी किराने की दुकान पर तो मजे भी कहेंगे कि देखो हमारा प्यारा आम पापड़ आया है। कई दुकानों पर तुम्हारे लिए पूछा लेकिन तुम कहीं मिले ही नहीं। और फिर एक दिन मेरी कजिन ने तुम्हें और तुम्हारे जायके को जुबान पर जब बिठाया ना, तो तुम्हारी यादें और ताजा हो गई। मिस यू माय बचपन के डिजर्ट एंड स्नैक, प्यारे आम पापड़, तुम्हारी सारा। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा, जो आपको यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में कैसेट की साइड बी का ये दूसरा गाना
0: मिर्ची 90s कैसेट।
1: गाना बिल्कुल सच बोलता है यार कि मुश्किल बड़ा ये प्यार है। सोच रही थी कि उससे भी मुश्किल तो इस गाने को लिखना रहा होगा यार, क्योंकि ये गाना दो दो लफ्जों के मीटर में लिखा गया है। आपने नोटिस किया? नहीं किया तो सुनाती हूँ।

मुश्किल बड़ा ये प्यार है। अब आप बताओ, प्यार मुश्किल हुआ या फिर इस गाने में वो दो लव्स ढूंढना जो मीटर में बैठ भी जाएं एंड दे ऑल्सो मेक सेंस। बिग डील डूड। एनीवेज चलो यार, अब ये गाना जब इतना सुनी लिया है तो बाकी का भी सुनी लेते हैं। लेकिन आफ्टर सजेस्टिंग दिस सॉन्ग फॉर योर 90 की प्लेलिस्ट, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू से हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी यहाँ के अलावा आप मुझसे मिल सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। इसी के साथ अगला गाना आ रहा, यू स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

नचाया है, हंसाया है, रुलाया है, डराया है, धमकाया है, हर तरह से एंटरटेन किया है इस बंदे ने। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ और मैं बात कर रही हूँ द वंडर कॉल्ड मिथुन चक्रवर्ती की। और मुझे ना ऐसा लगता है मुझे छोटे होते इन पे ना ऐसा छोटा सा क्रश था क्योंकि मैं इनकी सारी फिल्में देखती थी भाई, सारी फिल्में, चाहे वो टीवी पे आ रही है, चाहे वो VCR पे चल रही है, चाहे थिएटर, तो चलो उतना तब जाने को मिलता नहीं था, लेकिन आई वुड नॉट मिस मिथुन चक्रवर्ती फिल्म। फिर चाहे वो 80s की जो फिल्में थी ना उनकी, जिसमें वो ऐसे डायलॉग्स होते थे, ए साला तेरी आपड़ी की तोपड़ी लोहा, इलाका, गुंडा, गुनाहों का देवता, प्यार का देवता, देन कट टू 90s फिल्म्स लाइक जल्लाद, यमराज, रावण राज, चीता, सारी फिल्में भाई। और उनकी पहली फिल्म मैंने पता है कौन सी देखी थी VCR पे, प्यार झुकता नहीं। उसमें वो जो सेल्फ रिस्पेक्टिंग सा उनका किरदार होता है, वो जिस तरह से पद्मिनी कोल्हापुरी से उस फिल्म में प्यार करते हैं, बस तभी शायद वो छोटू सा प्यार हो गया था। हाँ, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, ऑन मिर्ची।

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

जमीन पर पैर तो जम चुके थे पर आसमान की उड़ान अभी बाकी थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। मैं बात कर रही हूँ द फिनोमिनन कॉल्ड मिथुन चक्रवर्ती की। 1976 में मृग्या जैसी फिल्म में नेशनल अवार्ड जीत के मिथुन ने कुछ 50 फिल्में की होंगी और उसके बाद आया उनके करियर का पिनिकल, वो शिखर, वो ऊंचाई जिसके लिए वो बने थे, 1982 के इंटरनेशनल ब्लॉकबस्टर डिस्को डांसर। जिन लोगों ने उस टाइम इस फिल्म के सक्सेस को विटनेस किया है ना, वही बता सकते हैं कि वो क्या सेंसेशन, क्या रेवोल्यूशन था। ये पहली इंडियन फिल्म थी जिसने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ रुपए कमाए थे। क्या होते थे 1982 में 100 करोड़? क्या एशिया, क्या अफ्रीका, क्या यूरोप भी? डिस्को डांसर का जिमी यानी कि मिथुन चक्रवर्ती एक हाउसहोल्ड नेम बन गए थे, खास करके रशिया में। ही वाज सो पॉपुलर कि एक बार जब मिथुन रशिया गए तो वहां के प्राइम मिनिस्टर को एक रैली कैंसिल करनी पड़ गई क्योंकि सारी पब्लिक एयरपोर्ट पहुंच गई मिथुन को देखने के लिए। वो शाइनी डिस्को बॉल्स वाले स्टेज पे चमक धमक वाले कपड़े पहन के, सर पे बैंड लगा हुआ, हाथ में माइक, पब्लिक पागल हो गई थी जब डिस्को डांसर के जिमी ने ये पूछा था,

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली ऑन

अर्ली 80s में पूरा इंडिया डांस डांस हुआ पड़ा था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी चीज पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। क्योंकि 1982 में मिथुन चक्रवर्ती की इंटरनेशनल ब्लॉकबस्टर डिस्को डांसर ने हाय तौबा मचा के रखी हुई थी। और इसके बाद ना मिथुन दा को थोक में फिल्मों के ऑफर आने लग गए और वो कर भी रहे थे। मैंने उनका एक पुराना इंटरव्यू सुना था जिसमें उन्होंने 1987 का इंटरव्यू, जिसमें वो कह रहे थे कि वो एक साथ कुछ 30-32 फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट मिथुन दा की फिल्मों का ना उस टाइम पे अपना ही एक अलग यूनिवर्स होता था, उसका बाकी फिल्मों से कोई लेना देना नहीं होता था, बिकॉज ये फिल्में आपस में ही कॉम्पिटिशन करती रहती थी। 1989 में मिथुन दा की कुछ 19 फिल्में आई थी, 1.5 फिल्म पर मंथ के हिसाब से लगा लो। एंड लेट मी टेल यू, सारी की सारी फिल्में हिट हो रही थी। एक फिल्म हिट हो रही है, फिर दूसरी आ गई, फिर तीसरी, अलग ही इंसेप्शन चल रहा है। चलिए अभी बातों पे ब्रेक, अभी गाना सुनेंगे डिस्को डांसर मूवी का। टाइटल ट्रैक नहीं, वो तो हम सुन चुके हैं, अभी हम वो गाना सुनेंगे जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। जब तक मैंने मूवी नहीं देखी थी ना, मुझे लगता था ये गाना वो अपने लवर के लिए गा रहा है। जब मूवी देखी तो पता चला ये गाना वो अपनी मदर के लिए गा रहा है, वो माँ जिसने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, उसको याद कर रहा है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मिथुन चक्रवर्ती ने, जी हमारे प्यारे मिथुन दा ने कुछ 350 फिल्मों में काम किया होगा। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और उनके अलग अलग रोल्स देख के ना, उनकी परफॉर्मेंस देख के ऐसा यकीन नहीं होता कि ये सेम बंदा है। अभी 4 बार इनको नेशनल अवार्ड मिल चुका है। वो बहुत ही ऑफ बीट नॉन कमर्शियल टाइप की फिल्में हैं वो। फिर फिल्म फेयर अवार्ड इनको मिले हैं बेस्ट नेगेटिव रोल के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए। मतलब कितनी वैरायटी, क्या रेंज है बंदे की। 80s में वो किस तरह के थे फिल्मों में, 90s में वो किस तरह के हो गए, और इनके डायलॉग्स अलग ही तरह के आइकॉनिक रहे हैं। 80s में तो भरमार लगा हुआ है, यू नो वो वाले जो डायलॉग्स होते थे, ऐ साला तेरी अपड़ी की तोपड़ी, या तेरी जात का बैदा मारूं, या तेरे नाम का कुत्ता पालूं, या कानून और देवता जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। बट मेरा फेवरेट पता है कौन सा है? जिस फिल्म का ये डायलॉग है उसी फिल्म का एक गाना भी है जो आई एम 100% श्योर आपको पसंद है। मूवी का नाम है गुलामी, डायलॉग है कोई शक, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जींस विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: Point three, Mirchi. It's hot.

मिर्ची इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्च।

आपको पता है एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी को हेमा मालिनी जी की मदर ने एक पार्टी में नोटिस किया था। मिर्ची सुन रहे आप, पुराने जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। जी, बिंदिया गोस्वामी जब एक टीनेजर थी तब एक पार्टी में हेमा मालिनी जी की मॉम ने उनको देखा और सोचा कि अरे ये तो बिल्कुल हेमा जैसी दिखती है। तब उन्होंने, हेमा मालिनी जी की मदर ने, बिंदिया गोस्वामी जी को प्रोड्यूसर्स को रेकमेंड करना शुरू किया। तो इनकी फर्स्ट फिल्म थी 1976 की जीवन ज्योति, विच वॉज अ फ्लॉप फिल्म, लेकिन धीरे धीरे उन्हें नोटिस किया जाने लगा। फिल्म्स लाइक खट्टा मीठा, गोलमाल, दादा, शान। एक्चुअली कितनी प्रिटी थी बिंदिया गोस्वामी, मतलब उनके बाल कितने सुंदर थे ना, लंबे लंबे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची के साथ।
2: मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

ये तो आपको पता है ना कि 1980 में बिंदिया गोस्वामी एंड विनोद मेहरा इन्होंने चुपके शादी की थी। मिर्ची सुन रहे आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसकी मेन वजह ये थी कि विनोद मेहरा साहब का अपनी फर्स्ट वाइफ से डिवोर्स नहीं हुआ था। इस वजह से बहुत सारे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स थे जहाँ पे तीन परिवार जुड़े हुए थे, और इस सब की वजह से चार साल के बाद ही 1984 में ये दोनों अलग हो गए। इसी दौरान बिंदिया गोस्वामी जी जेपी दत्ता साहब से भी मिली और दोनों ने शादी कर ली। उस दौरान बिंदिया गोस्वामी जी ने अपना करियर भी छोड़ दिया था। वैसे काफी साल बाद जेपी दत्ता साहब की जो फिल्में थी, चाहे वो बॉर्डर हो, रेफ्यूजी हो, उसमें उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम किया था बिंदिया गोस्वामी जी ने। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप

0: हिंदी फिल्मों के मोस्ट प्रोमिनेंट एक्टर्स में से एक थे ओम प्रकाश जी। मिर्ची सुन रहे हैं आप।
1: भाई इनका जन्म 1919 में कोई कहता है जम्मू में हुआ था, कोई कहता है लाहौर में हुआ था, क्योंकि ऐसा सुनने में आता है कि इनके फादर के दोनों जगह पे घर थे। खैर बचपन से इनको संगीत, अभिनय, फिल्मों का शौक था।
0: इन्होंने संगीत भी सीखा और शहर में जो नाटक ये सब जो होता था उसमें ये पार्टिसिपेट भी करते थे।
1: और धीरे धीरे इनकी जीवन और करियर की गाड़ी नॉर्थ इंडिया से बॉम्बे पहुंची
0: और फिर इन्होंने अपना एक आइकॉनिक फिल्मी करियर बनाया। क्या क्या किरदार निभाए हैं ओम प्रकाश जी ने भाई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: सामने वो देख रहे एक ट्रक आ रहा।
1: झूठ मत बोल, आ नहीं जा रहा।
0: देखो आंख मारे लाल लाल सिग्नल,
1: सिग्नल को तोड़ दो बाद बड़ी सिम।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: किशोर कुमार के बारे में कहने के लिए कितना कुछ है भाई। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सिर्फ हम लोगों के पास नहीं, पुराने एक्टर्स एक्ट्रेसेस से अगर आप सुने उनके पास भी बहुत कुछ है। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में माला सिन्हा जी ने किशोर दा के बारे में क्या कहा था।
1: सबसे ज्यादा कॉमेडियन और सबसे अच्छा इंसान और सच्ची कॉमेडी अगर सेट पे करता है वो है किशोर कुमार। मैंने उनके साथ काम किया था ना अपना बेवकूफ, और एक पिक्चर किया था मैंने बम्बई का ठग। अरे सेट पे एक मिनट वो चुप नहीं बैठने का, ऐसा लगता था जैसे उनके अंदर ना स्प्रिंग पड़ा हुआ है, चाबी भर दी और वो उछल रहे। और हर एक डायरेक्टर का नकल, हर एक का नकल, एक मिनट चुप नहीं। वो थे कॉमेडियन, स्क्रीन में भी कॉमेडियन, जो तो आपको स्क्रीन में दिखता करते हुए ऑफ टाइम में भी करते, सबको हंसाते रहना सेट पे।
0: इसी बात पे किशोर दा का एक फन सॉन्ग सुन लेते पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: hot.
1: Mirchi, it's hot.
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: मिड 70s में पब्लिक ने एंग्री यंग मैन वाले रोल्स पसंद करने शुरू कर दिए और इसीलिए सॉफ्ट रोमांटिक इमोशनल हीरो वाले रोल्स आउटडेटेड हो गए। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और इसीलिए राजेश खन्ना का सुपरस्टार का टाइटल अमिताभ बच्चन को दे दिया गया। अच्छा, अमिताभ बच्चन की सुपरस्टारडम के बारे में राजेश खन्ना जी से एक बार जब पूछा गया था तो सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
1: जो जिसकी किस्मत है और जो जिसका काम है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी होती है, डेस्टिनी है आपकी। और मैं तो ये चाहूँगा कि भाई जब उन्होंने आनंद में मेरे से काम मेरे साथ शुरू किया और आज इस मुकाम पे पहुँचे, मैं तो बहुत बहुत ही उनको मुबारकबाद दूंगा और आई विल बी वेरी हैप्पी और आई विल बी एनवीइंग हिम कि इस मुकाम पर पहुंचना और ये कामयाबी हासिल करना, ये बहुत गर्व की बात है, उन्हीं के लिए नहीं, हम लोगों के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी और जनता के लिए भी।
0: अच्छा, राजेश खन्ना अपने सुपरस्टार टाइटल के बारे में क्या सोचते थे, सुनिए उन्होंने एक बार क्या शेयर किया था।
1: नहीं जी, स्टार तो नहीं, मैं तो एक्टर हूँ, एक्टर था, एक्टर हूँ और एक्टर रहूँगा। स्टार बीच में मैं कहीं बन गया था, जिसे सुपरस्टार कहते हैं, स्टार जो भी है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक्टर को मैं जानता हूँ, था, हूँ और हमेशा रहूँगा।
0: चलिए अब ऐसी फिल्म का गाना सुनते हैं जिसमें इन दोनों सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस देखकर लगता है कि यस, इस टाइटल के ये दोनों वाकई में हकदार थे। आनंद फिल्म का गाना पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए,

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: It's hot.
0: Purani jeans. With Charu. Only on Mirchi.

भाई 1989 में जब मैंने प्यार किया फिल्म आई थी, इसने अपना एक छोटा सा रिकॉर्ड बना लिया था फिल्म फेयर अवार्ड्स का। मिर्ची सुन रहे आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 13 नॉमिनेशंस में से इसे 7 अवार्ड मिले थे, बेस्ट फिल्म, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट लिरिसिस्ट, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर, बेस्ट डेब्यू एक्टर, बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस। और ये रिकॉर्ड फिर तोड़ा DDLJ ने 1995 में 10 अवार्ड जीतकर। चलिए, अवार्ड का आना जाना तो लगा रहता है, मेन बात है दिल जीतना। और मैंने प्यार किया फिल्म ने ये काम बखूबी कर लिया था सबसे दोस्ती करके। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

सो रिसेंटली मैंने मूवी देखी 1972 की जोरू का गुलाम। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म में है काका, राजेश खन्ना एंड नंदा और ओम प्रकाश साहब भी हैं। सो बेसिकली ओम प्रकाश साहब बहुत रईस होते हैं, उनको अपने पैसे पे घमंड होता है। उनकी बेटी नंदा, इनको प्यार हो जाता है राजेश खन्ना साहब से, जो एक पेंटर होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, और ओम प्रकाश जी की मर्जी के खिलाफ ये उनसे शादी कर लेती है नंदा। अब सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बनते हैं कि राजेश खन्ना साहब को घर में नौकर बनके जोरू का गुलाम बनके रहना पड़ता है। उस वजह से क्या क्या सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, क्या क्या गूफ अप होते हैं, इज सो मच फन। राजेश खन्ना साहब की एक्टिंग, ओम प्रकाश साहब की एक्टिंग, टू गुड। इसी बात पर काका जी की फिल्म का ही गाना सुन लेते हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अर्ज किया है परवीन शाकिर नाम की शायरा है, उनका ये शेर है। मिर्ची सुन रहे आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। नहीं शेर ये नहीं था, शेर अभी मैं सुना रही हूँ। वो बचपन की नींद तो अब ख्वाब बन गई, क्या उम्र थी कि रात हुई और सो गए। इसी बात पर बच्चों के लिए नींद पर एक पोएम सुनिए। शौकत परदेसी की पोएम है नींद परी। शाम ढली हवा चली, दीप जले काम रुके, चांद हंसा रंग जमा, रात बढ़ी ओस पड़ी, हून हंसे प्यार लिए, आ ही गई छा ही गई, सपनों भरी नींद परी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: देखो, अचीवमेंट तो फिल्म की है, लेकिन उस अचीवमेंट को मैं पर्सनली फील कर पा रही हूँ।
2: श्रुति,
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट शिव रवाइल डायरेक्टोरियल फिल्म माँ बहन, जो कुछ टाइम पहले नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम करना शुरू हुई। और भाई साहब, मैंने जब से ये फिल्म देखी, आई मीन जिस दिन आई थी उसी दिन देख ली थी। एंड इस मूवी को देखने के बाद ना, जनरली इस सोसाइटी में दो तरीके के लोग नजर आए हैं मुझे। एक जो कह रहे हैं कि क्या मूवी बनाई है, हट, और दूसरे हैं जो कह रहे हैं कि क्या मूवी बनाई है, वाओ। सो आई बिलोंग टू द सेकंड कैटेगरी। आप अगर ये फिल्म देखेंगे और आप अगर थोड़े फेमिनिस्ट नेचर के होंगे तो आपको भी पसंद आएगी ये फिल्म, क्योंकि जो सोसाइटी की मिसोजिनी है उसके ऊपर ना सार्कासम के जूस में भिगो के मारा हुआ जूता है द मूवी। एंड राइट नाउ इट इज ग्लोबली ट्रेंडिंग इन टॉप 10 की लिस्ट ऑन नेटफ्लिक्स। तभी तो बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि काम अच्छा करोगे तो नाम तो उससे भी अच्छा हो जाएगा आपका, भले ही आपके नाम को कोई भी मिट्टी में मिलाने की कोशिश क्यों ना करे। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। एक्शन थ्रिलर फिल्म, लेकिन इसमें जो हीरोइन है उनका एक भी डायलॉग नहीं होने वाला। मैं बात कर रही हूँ अबाउट दिस अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म बेबी डू और डाई, जिसमें हुमा कुरेशी एक म्यूट एंड डेफ असैसिन बनी है। और इस बात को रिवील खुद फिल्म के डायरेक्टर नचिकेत सामंत ने एक रिसेंट इंटरव्यू में किया। सो इमेजिन, इस मारधाड़ वाली मूवी में हुमा कुरेशी बिना डायलॉग्स के एक इम्प्रेशन जमाएंगे हमारे ऊपर, जिसको देखने के लिए आई एम क्वाइट इंट्रीग्ड। मूवी में उनके अलावा सिकंदर खेर, चंकी पांडे, सीमा पावा, रचित सिंह एंड मधु शेखावत जैसे एक्टर्स भी है। एंड द फिल्म इज गोना रिलीज इन द थिएटर्स ऑन द 3rd of July। सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। OTT पे कुछ टाइम पहले आई एंड मच लव्ड फिल्म चिरैया की लीड एक्ट्रेस प्रसन्ना बिष्ट और एक्टर मिहिर आहूजा एक अपकमिंग फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं, जिसका नाम अभी डिसाइडेड नहीं है, बट ग्रेटर कलेश और बात पक्की है, फेम डायरेक्टर आदित्य इस मूवी को भी डायरेक्ट करने वाले हैं। It is going to be a light-hearted dramedy packed with humor, warmth and rooted storytelling, जिसकी शूटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। भाई, इस मूवी के लिए तो एक्साइटमेंट सुपर से भी ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ अबाउट आवारापन 2, क्योंकि इमरान हाशमी के अलावा इस फिल्म में शबाना आजमी भी नजर आएंगे। एंड माइंड यू, वो नफीसा के किरदार में है जो एक नेगेटिव कैरेक्टर है। अभी तक शबाना मैम ने इंडस्ट्री में 50 साल दे दिए हैं, इनफैक्ट उससे ज्यादा ही, और आज तक उन्होंने कोई भी नेगेटिव शेड वाला कैरेक्टर नहीं किया है। बट दिस इज गोना बी द फर्स्ट टाइम जब वो बड़े पर्दे पे एक खूंखार अवतार में नजर आएंगे, जिसको देखने के लिए आई एम श्योर आप भी अब एक्साइटेड होंगे। मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड इट इज सेट टू रिलीज इन द थिएटर्स ऑन द 14th of August। सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन एज वेल। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: आंख बड़ी छोरी दिल और चाह बड़ी बाहर तने चुपेगा जो सीता फिर गीता बनी चीता इससे पहले के पपीता गिरे जाल से दाल से पछाड़ गई जो भी ना उखाड़ ना उखाड़ गई
1: मिर्ची मिर्ची।

बनाऊंगा, ये तो क्या तुम ब्रिजेस बनाऊंगा, तेरे से मुझे करे बड़ा मिस ब्रो, उसको मैं सस बनाऊंगा, हर चीज़ लिटिल बिट फेमस बेबी।

एक्शन थ्रिलर फिल्म, लेकिन इसमें जो हीरोइन है उनका एक भी डायलॉग नहीं होने वाला। मैं बात कर रही हूँ अबाउट दिस अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म बेबी डू और डाई, जिसमें हुमा कुरैशी एक म्यूट एंड डेफ असैसिन बनी है। और इस बात को रिवील खुद फिल्म के डायरेक्टर नचिकेत सामंत ने एक रीसेंट इंटरव्यू में किया। सो इमेजिन, इस मार धाड़ वाली मूवी में हुमा कुरैशी बिना डायलॉग्स के एक इम्प्रेशन जमाएंगे हमारे ऊपर, जिसको देखने के लिए आई एम क्वाइट इंट्रीग्ड। मूवी में उनके अलावा सिकंदर खेर, चंकी पांडे, सीमा पावा, रचित सिंह एंड मधुर शेखावत जैसे एक्टर्स भी है। एंड द फिल्म इज गोना रिलीज इन द थिएटर्स ऑन द 3rd of July। सो ये बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। ओटीटी में कुछ टाइम पहले आई एंड मच लव्ड फिल्म चिरैया की लीड एक्ट्रेस प्रसन्ना बिष्ट और एक्टर मिहिर आहूजा एक अपकमिंग फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं, जिसका नाम अभी डिसाइडेड नहीं है, बट ग्रेटा कलेश और बात पकी है। फिल्म डायरेक्टर आदित्य इस मूवी को भी डायरेक्ट करने वाले हैं। It is going to be a light-hearted dramedy packed with humor, warmth and rooted storytelling, जिसकी शूटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। भाई इस मूवी के लिए तो एक्साइटमेंट सुपर से भी ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ अबाउट आवारापन 2, क्योंकि इमरान हाशमी के अलावा इस फिल्म में शबाना आजमी भी नजर आएंगी। एंड माइंड यू, वो नफीसा के किरदार में है,

0: सब लोग मनाए शोक कहें ये जोग है मेरे मन का कोई।
1: 98.3 मिर्ची।